0: 没办法。
1: 那个嘎 boss。
0: लगता है बॉस हमें टॉस करने वाला है।
1: अब क्या करें?
0: जो भी करेंगे